मियां मंसूर जब हजरत शिमली के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे सूली पे टांगा जा रहा है, क्या मैंने गलत कहा? है अनहल हक हक, मैं खुदा हूं, गलत क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा कि मंसूर तुमने सही बात गलत लोगों में कह दी। है अनहल हक हक मगर कहनी ना थी। और इसी वाक्य को आगे जाके किसी सूफी दरवेश ने क्या लिखा,